जिस भगवान मेरी नया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। ओ भगवान, फॉर सो लॉन्ग यू हैव बीन माय प्रोवाइडर, माय प्रोटेक्टर एंड माय सेवियर, प्लीज कंटिन्यू टू डू सो।

राम चंद्र की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सकल पंच की जय, जय सीताराम साधु की दंडवत जय जय।

दीवाने देखे तुमसे बहुत जमाने में, पहले पीछा करते हैं फिर मिलते हैं जेल खाने में।

प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय

चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणि रंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो

ओम नमः शिवाय, ओम हर हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र की जय हो। ऑल प्लीज स्टैंड फॉर आरती, एवरीबॉडी उठो सबको, प्रिपेयर फॉर आरती। वाव लॉग्ड इन, प्लीज लेट यू डे इन दिस पॉइंट इन टाइम ऑफ भगवान श्री राम इन रिमाइंड बुक ऑफ फ्लावर। लेट भगवान श्री राम ब्लेस यू, भगवान वॉन्ट्स टू ब्लेस यू, लेट भगवान ब्लेस यू।

की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री रामायण माता की जय, श्री तुलसीदास महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सदगुरु की दंडव जय जय सीताराम। और सच कंफर्टेबली आराम बैठे आप लोग। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय।

रघुवंशनाथम ओ विश्वानि देव सवितर दुरतानि परास्वा यद्भद्रं तन्नासेवत्।

उमापति महादेव की जय। भगवान शिव लोलित है योर प्रेयर। एवरीवन प्लीज स्टैंड फॉर आरती, एंड यू कैन कम इन ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज फॉर आरती एंड सो ऑन। वी आर लॉग्ड इन टू आरती एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेट भगवान श्री राम ब्लेस यू, श्री राम वांट्स टू ब्लेस यू, लेट हिम ब्लेस यू।

श्री रामचरितमानस सोपान प्रथम बालकांड गणेश वंदना गजाननम भूतगणादिसेवितम्

सुख को चाहना करने वाले प्रेम को साथ परमात्मा को ध्यान लगा करें वह श्री राम सा मंत्र को उच्चारण करना चाहिए, ऐसे जपन करो जैसे

भगर भैया राम राम सीता दिव्यता आयु प्रे आयु चार जैसे तत्व रामचंद्र की थे यू आर टू कम टू मी यू आर टू हैव पीस हैप्पीनेस जॉय या हियर आफ्टर दिस इज वन यू मस्ट ऑलवेज पुट इन थॉट दैट दिस इज द मेथड ऑफ प्रेयर चांट चांट माय डिवोटी चांट

0: का धर्म आपका स्टेशन टीवी जागृति।
1: Looking for something truly unique this season? Then you need to visit Fab India Expo, located opposite Medford Gas Station, Shagwana's. Brand new containers have just arrived, packed with one-of-a-kind garments you won't find anywhere else. Whether you're shopping for something stylish, traditional, or custom-made, we've got you covered, with made-to-order pieces tailored just for you. And it doesn't stop there. Take a stroll through our full food court, offering delicious options for the entire family. From savory bites to sweet treats, there's something for everyone. Plus, don't miss our big sale on furniture. Upgrade your home with beautiful pieces at unbeatable prices. So come on down to the Fab India Expo, located opposite Medford Gas Station, Shagwana's, where culture, style and savings come together.
2: माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं। क्यों जा रहे हो?
3: क्योंकि नियत ही मेरे बस में नहीं
4: अंत में आरंभ है
3: एक और प्रेम है
4: आरंभ में ये अंत
3: और दूसरी ओर कर्तव्य
5: मैं वासुदेव कृष्ण समस्त यादव सभा के सामने ये प्रण लेता हूं जब तक मुझ पर लगा ये कलंक नहीं मिटा दे मैं वापस द्वारका नहीं आऊंगा
3: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा सभा में चीर हरण किया इन्होंने द्रौपदी का और सारे धर्म अधिकारी चुप रहे
6: छोड़ो ये बंसी कृष्ण और उठाओ शस्त्र
3: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी

भगवान विष्णु माय डियर फ्रेंड्स टुक द अवतार ऑफ मनुष्य शरीर द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन टू फाइट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ धर्म. फर्स्ट वर्स ऑफ भगवद्गीता सेज धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम काहा पांडवाश्चैव किम कुरवत् संजय. भगवान श्री राम इज डिस्क्राइब एज धर्मरति. ही इज ए फाइटर फॉर धर्म. एंड सो टू जस्ट एज दैट वॉर टुक प्लेस इन कुरुक्षेत्र वी ऑल आर धर्म क्षेत्र. वी आर सोल्जर्स फॉर धर्म. टू द नेक्स्ट फ्यू नाइट्स ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू लर्न एंड रीड अबाउट द डिवाइन चरित ऑफ भगवान श्री राम. Bhagwan Shri Ram says in a very beautiful chaupai written later down in the Ramayana taken from Uttarkhand. Ehi kale kadan sadan duja. That in this age of Kali Yuga, this very dark age that we live in, my dear friends, there is no other medium, there is no other source of divinity that can

करिष्यति। भगवान गिव्स द क्रिएशन एंड ही टेक्स अवे द क्रिएशन एंड ऑल दिस वी कैन अंडरस्टैंड सिंपली माय डियर फ्रेंड्स बाय द नेम ऑफ भगवान श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी माय डियर फ्रेंड्स as many different characters understands the power and the significance of the name Bhagwan Shri Ram, it is said in this beautiful Chaupai, as we of course listen.